ये इंतबाह भी कर रहे हैं कि मगरबी और मशरकी जापान के बहरुलकाहल के रुख पर वाक़े साहिली हिस्सों में भी समंदरी तूफ़ान के सबब पैदा होने वाली ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं। तुर्की में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया रिमार्क्स को ज़ुबान की लग्जिश से ताबीर किया गया है। ट्रंप ने बुध के रोज़ अनकरा में नेटो सरबराही इजलास के मौके पर यूक्रेन के सदर वलादिमीर ज़ेलेंस्की के हमराह अखबारी नुमाइंदों से बात की। ट्रंप ने कहा कि 2 माह कबल बुहैरा अरब में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन पर इस्लामी जमहूरिया जापान की तरफ से 111 मिज़ाइल दागे गए। उन्होंने कहा कि जहाज़ तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा देर तक गोलाबारी की जद में रहा। सदर बज़ाहिर इस्लामी जमहूरिया ईरान कहना चाहते थे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की तरफ भी इशारा करते हुए सहाफ़ियों से पूछा, क्या आप सदर पुतिन से कोई सवाल करना चाहते हैं? उन्होंने गलती से यूक्रेनी रहनुमा को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कह दिया। ट्रंप गुज़िश्ता माह 80 साल के हो गए हैं। उनकी सालगिरह से कबल वाइट हाउस ने सदर के मुआलिद की जानिब से एक मेमो जारी किया, जिसमें कहा गया था कि मजमूई तौर पर मजबूत जिस्मानी अफ़ाल के साथ ट्रंप की सेहत बेहतरीन है। जापान के वज़ीर दिफा कोइज़ुमी शिंजिरो ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कहा है कि टोक्यो उनकी जानिब से जापानी फ्रिगेट पर मबनी नए बहरी जहाज मुतारिफ़ कराने में उन ममालिक के साथ बढ़ चढ़ कर तआवुन करेगा। कोइज़ुमी ने बुध को तुर्की में ऑस्ट्रेलिया की दिफाई सनत के वज़ीर पीट कॉनरॉय और न्यूजीलैंड के वज़ीर दिफा क्रिस पैंक के साथ बातचीत की। मुलाकात के दौरान कोइज़ुमी ने कहा कि चीनी आबदोज से मिज़ाइल दागे जाने के फौरन बाद जमा होना और इलाकाई सूरत हाल पर ख़यालात का इश्तराक करना हम सब के लिए बहुत बरवक्त है। उन्होंने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तआवुन को दिल से सराहते हैं। उन्होंने जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के मोगामी क्लास फ्रिगेट पर मबनी नए बहरी जहाज़ों की मुश्तरका तैयारी के बारे में बात की। कोइज़ुमी ने न्यूजीलैंड का भी तذکرہ किया, जो इस बात पर गौर कर रहा है कि मुल्क में मुतारिफ करवाए जाने वाले जहाज़ों में जापानी फ्रिगेट को शामिल किया जाए। उन्होंने टोक्यो की जानिब से फाल तआवुन के इरादे का इजहार किया।

0: खरीदने जाएं और चाहते हैं कि दुकानदार वो चीज़ दिखाए, तो उस चीज़ के नाम के बाद गा और उसके बाद होशीन देसगा लगाएं। होशीन देसगा ये इसमें सिफत होशी यानी चाहिए के बाद देसगा लगा कर बनाया गया है। देसगा अपनी बात की वजाहत के साथ साथ इस बात का इशारा है कि आप मुखातिब से किसी जवाब की तवक्को रखते हैं।
1: तो मकालमे की सूरत हाल में थिबिक्रो यानी दस्तानों के बाद गा और फिर होशीन देसगा यानी चाहिए लगा कर बनाया गया है, थिबिक्रो गा होशीन देसगा, यानी एक तरह से ताम दुकानदार से कह रही है कि मुझे दस्ताने दिखाएं, ऐसा ही है ना?
0: जी बिल्कुल ऐसा ही है।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए, जुमले के आखिर में लहजा धीमा कर लेना बेहतर तासुर देगा।
2: होशीन देसगा, थिबिक्रो गा होशीन देसगा, थिबिक्रो गा होशीन देसगा।
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: और अब एक दुकान में ग्राहक और दुकानदार के दरमियान होने वाला मकालमा सुनिए।
3: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: वो माफ कीजिएगा, मुझे होकाइडो की सौगात चाहिए।
0: आनो ये किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है। ओमी आगे के मायने है किसी इलाके की सौगात। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि सफर के मकाम से क्या तोहफा ले जाएं, तो दुकानदार से ये जुमला कहना बेहतर होगा।
4: सो दिस ने कोनो ओकाशी वा इकागा देस का।
1: अच्छा, इस मिठाई के बारे में क्या ख्याल है?
0: सो दिस ने ये अक्सर कोई मुनासिब जवाब सोचने के दौरान कहा जाता है। कोनो ओकाशी यानी ये मिठाई और इकागा देस का किसी चीज़ की सिफारिश के लिए कहा जाता है, यानी ये चीज़ कैसी रहेगी या इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
2: お土産が欲しいんですが、北海道のお土産が欲しいんですが、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: उम्मीद है आपने अच्छी तरह मश्क कर ली होगी।
0: अब इसी अंदाज की कुछ और मश्कें। फर्ज करें आप गठड़ी बांधने वाला रिवायती जापानी रुमाल खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार से ये बात किस तरह कहेंगे? जापान के उस रिवायती बड़े रुमाल को कहते हैं
2: फुरोशिकी, फुरोशिकी।
5: अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशीन देसु गा। अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशीन देसु गा।
0: और अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
2: कासा, कासा।
6: すみません。傘が欲しいんですが。すみません。傘が欲しいんですが。
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकालमे में ताम ने दुकानदार को अदायगी के वक्त इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लें।
7: कार्डो वा त्स्काएमासु का?
0: कार्डो वा त्स्काएमासु का यानी क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ का दो दरअसल कुरेजित्तो का दो यानी क्रेडिट कार्ड की मुख्तसर शक्ल है। आप अपने पास मौजूद क्रेडिट कार्ड दिखाकर यूं भी पूछ सकते हैं कोनो का दो अत्स्कायमस्का, यानी क्या ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए। जी सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: कार्ड वा त्स्काएमास्का।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम उस चीज के बारे में बताती है जो वो खरीदना चाहती है।
7: すみません。 手袋 が欲しいんですが。
8: 手袋はこちらです。
7: これ、あったかそう。いいですね。これいくらですか
8: ？1900円です。
7: カードは使えますか？
8: はい、使えます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: अब हारू सान की ज़ंबील का कॉर्नर। آج کا موضوع ہے جاپان میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال.
0: ہیرا، آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
1: ہاں جی، اکثر کرتی ہوں کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے. اسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی. لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے.
0: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے، لیکن بعض جگہوں پر، خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں، صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے.
1: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں.
0: جی، آپ کی بات درست ہے، لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے، یعنی نقدی کے بغیر، ادائیگی ممکن ہے. بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے. ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں، اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے.
1: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں.
0: یقیناً، اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے.